जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ूम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-66-11। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए आप हमारा प्रोग्राम को सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम सुनाई देता है। तो चलिए यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज रविवार की सुबह की प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी

सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रविवार के सुबह की प्रोग्राम पेश किया जा रहा है प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। अगला भजन अनूप जलोथा जी की आवाज

0: अनूप जलोत्रा जी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अनूप जलोत्रा के बाद पंडित गैनेन्द्र शर्मा जी की आवाज में चले मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं आज रविवार की भजन यात्रा प्रोग्राम में।
1: भगवत प्रेमी सज्जनों, प्रस्तुत भजन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी मधुबन में झूला झूल रहे हैं और राधा की सखियां व कन्हैया के सखा ग्वाल बाल सभी मिलकर झोटा दे रहे हैं। इस मनोहर दृश्य को देखकर भक्त अपने हृदय के भावों को किस तरह से व्यक्त कर रहा है, सुनिए।

वास में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार मिलकर ये सुंदर और सुंदर सा भजन को सुनते हैं। आज के प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है सोनू निगम की आवाज में, सोनू

शरण जी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। अब की बार सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं। एक सुंदर सा श्री कृष्ण भजन पेश किया जा रहा है।

में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलते हैं गुरमीत और मीना की ओर।

यात्रा प्रोग्राम में। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और खासतौर पर सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ।

0: पोर्टवल जी की आवाज में ये सुंदर सा आरती भजन आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, यहाँ तक भजन यात्रा प्रोग्राम आज रविवार का आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। आसरा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। कल सोमवार है, कल सुबह 7 बजे से फिर भजन यात्रा का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS.
2: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verblijf. €5 per verblijf. €5 per verblijf met gratis downloadlink na de verblijf. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

0: शनिवार को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। वैसे कल सोमवार है, कल सुबह 8 बजे से भजन यात्रा के प्रोग्राम पेश किया जाएगी। हमने आपको खबर दिया प्रोग्राम भजन यात्रा में कि 7 बजे से शुरू होगा, लेकिन कल छुट्टी का दिन है तो 8 बजे से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। तो चलिए यहाँ से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर। गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ पुरानी नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। पहला गाना पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। पहला गाना प्रोग्राम में आप जरूर सुनते ही रहना, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में आज उड़ता हुआ एक पंछी।
1: आज

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में प्रसून मुखर्जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है फिल्म 20 साल बाद।

avance, mais gana bus program be piski gay. फिल्म 20 साल बाद उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

0: खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत पेश की गए, खासतौर पर 1950 का फिल्म का गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम निराला, उसी फिल्म से अभी आपने ये खूबसूरत गाना सुना लता जी की आवाज में। चले किशोर कुमार की ओर और अब की बार श्री रामचंद्र का संगीत पर ये गाना पेश किया जा रहा है।
1: इनामी नाडी का डायडामेनिका मगा नागा नागा

0: ये शर्तें तो बड़ी है जरूरी, जो कोई करेगा इन्हें पूरी। मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा, मगर ये कहूंगा
1: क्या
0: यही तो है वो
2: किशोर कुमार। किशोर कुमार की आवाज में श्री रामचंद्र का संगीत पर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार के बाद चलेगा आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। लता मंगेशकर की आवाज में

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया।

उन्नीस सौ इकसठ का फिल्म, फिल्म का नाम घराना। उसी फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-62-66-11। इसी तार की नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। चले किशोर एन लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

किशोर कुमार और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। उसी सुनने वालों, बस रोजाना मोबाइल फोन टैबलेट के जरिए बस प्रोग्राम को सुनते हैं। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर से किशोर कुमार की ओर, साथ में होगा आपकी बार आशा भोसले और फिल्म का नाम जाग उठा इंसान। किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना।

किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम जाग उठा इंसान। चलिए प्रोग्राम में महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। महेंद्र कपूर और लता के बाद हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और आशा जी की ओर, और गाना का बोल है सांसों में कभी। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया।

सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अबकी बार फिल्म दरिंदा, उसी फिल्म का गीत प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में।

माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था दारिंदा। दारिंदा फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चलिए अब की बार मोहम्मद रफी और लता जी की ओर।

रेडियो SBS के जरिए किशोर कुमार एन आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किए पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। इतवार रविवार का दिन है, 24 तारीख मई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

मुस्कुराता फैशन दुकान के जरिए ये खबर किया जा रहा है कि आज इतवार इस पिंगस्टर दाह का दिन दुकान भी खुला रहेगा। दिन में 1 बजे से लेकर के और 5 बजे तक, और कल सोमवार दिन में 12 बजे से लेकर के और शाम में 5:30 बजे तक दुकान खुला रहेगा। और पिंगस्टर के मौके पर आन बीडिंग दुकान के अंदर में रखा गया है मुस्कुराता के पास। बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन मुस्कुराता.nl वेबसाइट पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। लेकिन इस पिंगस्टर में दुकान खुला रहेगा आज और कल, आज 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक, और कल सोमवार 12 बजे से लेकर के शाम में 5:30 बजे तक। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा

इसकी गए मोहम्मद रफी की आवाज में, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक पुरानी फिल्म का गीत जो प्रोग्राम में पेश होगा, पुरानी फिल्में संगीत होगा प्रोग्राम में, महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में।

0: हार पुकारे आजा।
1: महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। आप सभी सिद्ध वालों की सेवा में सिद्ध वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी टारगी नंबर पर रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में। एक गाना जो पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम हाथी मेरे साथी।

रेडियो एसबीएस के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किए गए आप सभी सुनवालों की सेवा में हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर एन लता जी की आवाज में। सुनवालों आपको मालूम होना चाहिए कि आज रोटरडम अहोई में जुबिन नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं। टिकट आप खरीदना चाहेंगे, टिकट अभी आपने नहीं खरीदा है तो वेबसाइट iStrapTickets.com उसी वेबसाइट पर जाकर अपना टिकट को आप खरीद सकते हैं।

सभी सुडवालू की सेवा में मशमीश किया जा रहा है। सुडवालू आज रात्रि में 8 बजे से साल अर्जुन में एक जबरदस्त डांस पार्टी होने वाले है। म्यूजिक फॉर्मेट से रियल सेलेक्शंस।

साल अर्जुन में कई कई बार सबके सब यहाँ पर रहेंगे, तो मतलब होते हैं खूब खाना पीना होगा और खूब डांस भी होगा। बट म्यूजिक फॉर बात रियल सेलेक्शंस

Zaal Arjun, Loevenhoutse Dijk, nummer 6 in Utrecht. सभी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है रेडियो SBS का फेसबुक पर या तो रेडियो

गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस भी शुगम द माइटी मुकेश और लता जी की आवाज में गाना आप सुनते ही रहना।

मुकेश और लता जी की आवाज में फिल्म हरियाली और रास्ता, उसी ये फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। इस पिंगस्तर दाखे और इतनी खूबसूरत, हाँ इतना खूबसूरत मौसम है, बाहर की ओर देखा जाए धूप ही धूप निकला हुआ है और बाहर गर्मी सा मौसम, स्टूडियो के अंदर ठंडी ठंडी सा है। बस पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले मिलकर अब की बार ये गाना को सुनते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। किशोर एंड आयशा प्रोग्राम में

रेडियो SBS की जरिए अंश भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हर सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक खूबसूरत पुरानी फिल्मी गाने नगमे आप हर एक के लिए बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी एनलता होगा हसीना मान जाएगी फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये खूबसूरत गाना शेरों की बादशाह और संगीत का फरिश्ता मरहूम मोहम्मद रफी एंड द क्वीन ऑफ इंडिया लता जी की आवाज में।

आशा जी की आवाज में, आशा की आवाज में ये गाना पेश किए गए। फिल्म हवस का गीत अभी आपने सुना, जो आज की प्रोग्राम में पेश किए गए सभी सुन वालों की सेवा में। 12 मिनट बाकी है सुबह 11 बजे में, 12 मिनट बाकी है सुबह 11 बजे में। चले आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी।

गाना जो पेश किए गए गोरी चलो ना हंस की चाल जमाना दुश्मन है, मोहम्मद रफी एंड आशा जी की आवाज में फिल्म बेटी बेटे, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश किए गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आहिस्ता आहिस्ता पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो है सुनने वालों खत्म होने पर आ रहा है, एक दो नख में और होगा। लता जी की आवाज में फिल्म का नाम बरखा।

रेडियो वेस में इसके जरिए लता जी की आवाज में फिल्म बरखा, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गए। चले एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत इस पुरानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। द माइटी मुकेश की आवाज में आप सुनेंगे, लेकिन मत भूलना कल सोमवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम बस पेश किया जाएगी। माइटी मुकेश की आवाज में आखिरी पुरानी फिल्म का गीत इस पुरानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम भी। इस गाना के बाद खबरें बस प्रोग्राम में पेश होगा, उसके बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलेंगे प्रोग्राम लेकर के, आगामी प्रोग्राम लेकर के।

अरिजीत सिंह एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया है, लागी ना छूते। जेंटलमैन फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक बार फिर से अरिजीत सिंह की ओर हम आपको ले चलते हैं।

सिंह अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

अरिजीत सिंह के बाद चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्रेया जी की ओर। श्रेया जी की आवाज में अब की बार ये सॉन्ग, ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गई श्रेया जी की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए अब की बार आज के प्रोग्राम में फिल्म आजा न चले सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

बड़ी ही खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में अभिजीत और खास तौर पर अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में अभी आपने सुना। एक गाना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति और अतिथ्या नारायण की आवाज में पेश किया जा रहा है।

आदित्य नारायण की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अलका एन कुमार सानू आज के प्रोग्राम में, सपने साजन की फिल्म का नाम

AM. Sinovalo Radio SBS का वेबसाइट radiosbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में तुलसी कुमार, अरिजीत सिंह और अमाल मलिक के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है सलामत

शिशु कुमार, अरिजीत सिंह और अमाल मलिक की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चले प्रोग्राम में अगली बार एक और काफी खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में गाना जो अबकी बार पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज में।

कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वेबसाइट radio.sbs.nl। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर, जावेद अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज में।

DJ Jamie Hadi en Sushin Johan die aan het spelen is. Nu snaakt hij voor hem mee hier op Surat Danam. चलिए फिल्म दबंग की ओर सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

En श्रेया जी की आवाज में सोनू निगम एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई दबंग फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म दहे की ओर।

सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए 0322 65 65 60 है। कुमार सानू एंड

रेडियो SBS के जरिए कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में हिमेश रेशमिया और साथियों की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। गाना का बोल है उमराव जान।

हिमेश रेशमिया और साथियों की आवाज में ये गाना पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले अरिजीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में कौर खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

रेडियो SBS की जरिए राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर सुनते ही रहना।

कुछ लोकल नगमे आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी, तो रेडियो वेस में इसका प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

0: पद खुला है, अगर आप सामान खरीदना चाहेंगे तो अभी और इसी वक्त यहाँ पर तशरीफ फरमाइए। आज रविवार का दिन सुबह 11 बजे से लेकर के और आज शाम में 5 बजे तक दुकान खुला रहेगा सुपर मार्केट को दबाह। और कल जबकि सोमवार है तो सुबह 8:30 बजे से लेकर के और 6 बजे तक दुकान खुला रहेगा। ये खबर किया है सुपर मार्केट को दबाह, ये खबर किया है कि आज दुकान शाम में 5 बजे तक खुला रहेगा और कल सुबह 8:30 बजे से लेकर के और 5 बजे तक, क्या कहिए, सुबह 8:30 बजे से लेकर के और शाम में 6 बजे तक दुकान खुला रहेगा। और साथ ही साथ मुस्कुराता दुकान भी खबर कर रहे हैं, मुस्कुराता दुकान जो जनहक शहर के अंदर में है आज दुकान भी खुला है 1 बजे से लेकर के और 5 बजे तक, तो इस वक्त दुकान खुला है तो शाम में 5 बजे तक यहां पर जरूर आप तशरीफ फरमाइए मुस्कुराता फैशन दुकान के पास में। और कल जबकि सोमवार ट्वेट पिंक सरदाह का दिन है तो दिन में 12 बजे से लेकर के शाम में 5:30 बजे तक दुकान खुला रहेगा। तो चलिए यहाँ से प्रोग्राम में कुछ लोकल नखमे की ओर हम आपको ले चलते हैं।
1: हेलो,
0: जो आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

0: गाना जो पेश की गए बुका बुका मिक्स, अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए। सुनने वालों, मौसम काफी हसीन खूबसूरत सुहाना मौसम है।
1: खाई पिए और तुम तो मजा हम कर बे।
0: संदेश सिवडिंग।

रेडियो SBS के जरिए संडे स्यूडिन के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपको खबर किया गया है रिक्लाम की जरिए की उत्तराखंड शहर के अंदर में जबरदस्त पार्टी होने वाले हैं आज रात्रि में 8 बजे से, जहां पर आप डांस करेंगे रियल सेलेक्शंस का।

उत्तराखंड में रात्रि में 8 बजे से लेकर के और काफी रात्रि तक हंगामा ही हंगामा होने वाले हैं उत्तराखंड शहर के अंदर में। बखानदासन में म्यूजिक फॉर बाजी रियल सेलेक्शन ऑन द लाइटिंग फन पेड्रो केडू।

कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको खबर किया 4-9 यूर टिकट का दाम 5 यूरो ना 9 यूर दूर दर। सभी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है रेडियो एसपीएस का फेसबुक पर और रेडियो एसपीएस का

और खासतौर पर रियल सिलेक्शन भी रहेंगे। म्यूजिक पर बात सी रियल सिलेक्शन, ये खास मशहूर गाना लेकर के, और गाना का बोल है साखन साखन। रिक रिखिलियो की आवाज में वहां वहां लेकर डांसन इन साल अर्जुन 8 बजे से लेकर के

और आपको खबर किया जा रहा है 4-9 s'avonds, ticket gedaan, €5 रखा गया है, ना 9 uur

रात्रि में 8 बजे से साल अर्जुन। उसी साल में हम सब डांस करेंगे रियो सेलेक्शंस का संगीत पर गाना जो अभी आपने सुना साखन साखन। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है लाइव फनाउट एट हार्ट फन नीदरलैंड फनाउट मिड नीदरलैंड। किंग सेलेक्टर सविता सिंह एंड

King Selector and Sadhana Leela के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए गाना हो रहे रियल सेलेक्शन का संगीत पर रिखीरियो प्रोग्राम में मेरेंगे मिक्स आपकी सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और ये म्यूजिक ग्रुप आज लाइव रहेंगे साल अर्जुन उत्तराखंड शहर के।

मिक्स आपकी सेवा में पेश की गई रिखिलियो की आवाज में रियो सेलेक्शन का संगीत पर अभी आपने सुना। और आप सभी सुनने वालों को यही खबर किया जा रहा है, यही म्यूजिक ग्रुप आज रात्रि में रहेंगे जो आपके दिल बहलाएंगे साल अर्जुन में। रियो सेलेक्शन का संगीत पर अभी आपने सुना। और आप सभी सुनने वालों को यही खबर किया जा रहा है, यही म्यूजिक ग्रुप आज रात्रि में रहेंगे जो आपके दिल बहलाएंगे साल अर्जुन में।

फसील के आवास में ये गाना भी इस प्रोग्राम में पेश की गए। 5 minutes over 2:30 स्टूडियो टाइट हो चुका है। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार ये गाना की ओर, संजय जुधा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में। तकरीबन दो बजे तक ये प्रोग्राम लोकल गाने नखमे का प्रोग्राम पेश किया जाएगी आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

31 समारोह के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। शहर उत्तराखंड टेम्स ड्राइव 237 से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश

सुनने वालों चले आज की लोकल गाने का खास प्रोग्राम में एक आखिरी और आखिरी गाना अब उस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और इस गाने के बाद प्रोग्राम में खबरें होगा जरूर आप सुनते ही रहना उसके बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं।

सब ही सुनने वालों की सेवा में। घड़ी की ओर देखा जाए 2:00 प्रोग्राम में 12 मिनट व्यतीत हो चुका है। चले प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर, मत भूलना भी 3 से बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम पेश किया जाएगी और वो भी ग्लेन रामबाली के जरिए।

रेडियो एसबीएस की जरिए पेश की गई ना कजरे की धार। शुरू वालों एक आखिरी गाना पेश किया जा रहा है, उसके बाद ग्लेन की जरिए प्रोग्राम आगे तक जरूर सुनते ही रहना, मुझे इजाजत और आज्ञा दीजिए। बस आज रात्रि की वक्त में शायद कहीं ना कहीं मुलाकात होगा, तब तक के लिए हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए। कल सुबह ठीक 8 बजे मैं आप सभी सुनने वालों को बस फिर से सेवा और खिदमत करूंगा प्रोग्राम लेकर के। मैं था आपका

सुनते रहना, सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल्स, न्यूज, फरकेल्स इनफॉरमेशन और उसके बाद में बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो एसबीएस।

तीन बजकर इस वक्त 6 मिनट गुजर रहा है। 6 मिनट 9 बज रही। बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम सुनते रहना यहाँ से ओवर रेडियो SBS

हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे सुनते रहना लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ऑफ द कमर्शियल रेडियो SBS।

0: प्रशिक्षा दीनदयाल के पास में भी आप सुन रहे थे के भीर भाई भारी और अब की बात
1: अरे जल्दी रे मुहा
0: दविंद्र सिंह शिवनाथ के पास में।

द बैठक गाना टाइगर फ्रॉम यूट्रेक्ट और साथ में अमितवा के आवाज में भी आप सुन रहे थे, यानी कि रजीव हुब्बा साथ में अमितवा के आवाज में भी आप सुन रहे थे प्रोग्राम से। और अब की बार सुनते रहना सुजल सुजल उमराव के आवाज में सुनते रहना।

032-62-66-11 स्टूडियो का टारगेट नंबर आपको दिया जा रहा है। अब इसे फरमाइश इश्तिहार या तो मृत्यु समाचार के लिए, यानी कि हर एक रेडियो के काम के लिए आप तार कीजिए, वो भी 24 घंटा लगातार। 032-65-66-66

अर्ज़ पर जब रुके मेरी आका तो ये गायब हुआ हक में मेरी मौला, तो ये गायब हुआ।

रोटी रोटी राम रूप के वास में सुनते रहे ना के चोलिया चोलिया कसके सिवैयो ना रावती राम रूप के वास में।

Inmiddels 4 minuten. 4 minuten over 4. 4 बजकर इस वक्त 4 मिनट गुजर रहा है. बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम लाइव के जरिए ओवर रेडियो SBS.

0: शांति शिव नंदन के वास में अभी आप सुनते प्रोग्राम से
1: भौजी।
0: और अब की बात सुनते रहना के ना बोल, ना बोल बोल रे भौजी।

0: लूटत है मोके लूटत है रे कौन ठगवा नगरिया को
1: महेश रेखा के पास में सुनते रहना।

0: महेश महेश रेखा के पास में भी आप सुन रहे थे।
1: अरे मुन्ने के मैं अजय सुनते नहीं हो, बच्चे रो रहे हैं।
0: हेंग गोपाल, हेंग गोपाल के वास में सुन रही ना के मुन्ने के अम्मा, ये तो बता।
2: अरे क्या है जी?
1: अरे तो

0: के अमवारे हैं गोपाल और साथियों के पास में भी आप सुन रहे थे
1: पिछवारे से बोले आओ रसिया मैं तो अदर
0: राजू सिंह गुलाम के पास में सुनते रहना।

0: और आपकी बात सुनते रहना केसरी केसरी प्रसाद के आवाज में।
1: रात मोर गैया
0: के नथुनिया।

नथुनिया हेरा गयो। केसरी प्रसाद के वास में भी आप सुनते हैं। और अब की बार विजयवती चैतु के वास में

0: मेरे पतली कमर लंबी बाल रे भी जानवती चैतु के वास में अभी आप सुनते और सुनते रहे ना आपकी बार आसमान आसमान बुलई के वास में
1: अरे मन तीर छे
0: नजरिया लोभाए लिए जाए आसमान बुलई के वास में सुनते रहे ना

आसमान आसमान बुलाए के वास में भी आप सुन रहे थे। हॉलैंड के अलावा दुनिया के हर एक कोने में कोने कोने में लोगो हमेशा सुनते हैं दया बे प्लस के जरिए और साथ में ऑनलाइन।

0: सुनो दिलदार जाऊंगी कहाँ दिल तोड़ के। रविंद्र भोला सिंह के पास में भी आप सुनते
1: करे बात।

5:00 इस वक्त 6 मिनट गुजर रहा है, 6:05 लाइव के जरिए टेम्स ड्राइव नंबर 237 शुरू ट्रैक के अंदर से बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS।

0: हफीज खान और साथियों के आवाज में भी आप सुन रहे थे
1: अतर के शीशे, अतर के शीशे मैं पत्थरों से तोड़ दूं, अतर के शीशे, अरे मैं

और अब की बार सुनते रहना संदीप, संदीप बदलू के वास में एंथोफ के रहने वाला आज का पसंद सुनते रहना, जो कि हमारा प्रोग्राम को इस वक्त क्रोएशिया में सुन रहा है।

के सोनी चिरैया अपना दिल हमें दे दे। किस जगह सर के वास में भी आप सुनते प्रोग्राम से

0: Croazië. Croazië, Pula. Pula se. Eindhoven, Kerenewala. Rajka, Pasanta, Biab, Surita, Program se.
1: Adari, Badari. चंद्रमा छिपे अमावस आए पानी के बूंद पतंग छिपे मीन छिपे।
0: आहिस्ता आहिस्ता आज की बैठक गाना प्रोग्राम समाप्त होने पर आते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते रहना
1: फागुन ऋतु आए
0: रामदेव चैतु के पास में।
1: पट ओठ छिपे पर चंचल नारी छिपे न छिपाए।
0: क्यों खफा है तू हमसे फिर भी हमार जिया लागा है तुमसे। रामदेव चैतु के

उमर वागी दुसैन के वास में अभी आप सुनते प्रोग्राम से और सुनते रहना आपकी बार राजू सु गुलाम और साथ में सुनीता के वास में सुनते रहना।

बस समाप्त होने पर आया आज की बैठक गाना प्रोग्राम। यहाँ से आने वाले रविवार को शाम में सुनते रहना फिर से एक बार बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर द कमर्शियल रेडियो SBS। अभी सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल्स न्यूज फिर से फमासी और उसके बाद में आज आंचलिक के जरिए प्रोग्राम सुनते रहना। मैं था आप ही का खिदमतगुजार ग्लेन। हमारे तरफ से आप सब सभी को एक शुभ शाम कहा जा रहा है। मिलेंगे फिर आने वाले रविवार को शाम में।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशली करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशली करमलाल, दी फा हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल रिएगेर कान ऑल टाइम सर्फ मना द वेबसाइट www.radiosbs.nl।

ये नयन धरे धरे आपने सुना हेमंत दा की आवाज में फिल्म कोहरा से। और अब आप सुनिए प्रोग्राम गीतों के लहर में अगला गाना फिल्म खामोशी से, वो शाम कुछ अजीब थी।

आपने सुना फिल्म पागलपंती से, और अब आप सुनिए अलका याचिका और उदित नारायण की आवाज में फिल्म तेरे नाम से। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आंखें हैरान सी रह जाती हैं।

सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। अलका याचने की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, अली असमत की आवाज में फिल्म जिस्म 2 से, मौला मौला।

तू मगर सामने आप ही जाया करो, लाजमी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। इस खुशों और अलका याच ने कहना भी जीत एंड क्वामा द फिल्म राज। एंड दा कम दिट प्रख्तक लीचे खुशों और तांशिक बाची आउट द फिल्म शेरशाह के राता लंबिया लंबिया है और सो फर लिफ्ट हीरो।

वो बारिश की बूंदे इज आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड, अ फिल्म फन श्रद्धा कपूर एंड अर्जुन कपूर. एंड आउट द फिल्म प्यार तो होना ही था कॉम्प गुसंग दौर आशा भोसले एंड विनोद राठौर. प्यार तो होना ही था द टाइटल सॉन्ग.

कौन मैं? हाँ तुम, बस तुम। ओफो, वास आउट द फिल्म अजनबी एंड आउट द फिल्म 14 फेरे कंठ सहंदो रेखा भारद्वाज राम सीता संग द्वारे।

मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे, राधा कैसे न जेले बस अर द फिल्म लगान एंड अर द फिल्म प्यार तूने क्या किया कॉम्ट गेजॉन्ग डोर सोनू निगम एंड अलका याचिक द टाइटल सॉन्ग।

सुना है तेरे दिल पे मेरे, कहीं ना कहीं नाम लिखा है इस सॉन्ग दो श्रेया घोषाल एक वाम आउट द फिल्म सनक, आउट द फिल्म टाइगर जिंदा है कम दाग सॉन्ग दो आतिफ असलम दिल दिया गल्ला।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो.